0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: Entertainment बहुत हो रहा है आजकल. कंटेंट भी, रील्स भी, सॉन्ग्स भी, शोज भी, हर फ्राइडे कुछ ना कुछ आ ही रहा है. लेकिन ऑनेस्टली याद रहने वाली चीजें बहुत कम बन रही हैं, और शायद इसलिए इस वक्त बॉलीवुड का मूड इंटरेस्टिंग लग रहा है. एक तरफ धुरंधर जैसी फिल्म है, इसके गाने सिर्फ चल नहीं रहे, कल्चर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एंड दूसरी तरफ 90s और 2000s की मेमोरीज फिर से कमबैक कर रही हैं. पुराने साउंड सडनली कूल लगने लगे हैं, नए आर्टिस्ट ओवरनाइट स्टार्स बन गए हैं, एंड ऑडियंस सिर्फ नॉइज नहीं, फीलिंग ढूंढ रही है, कनेक्शन ढूंढ रही है. बिकॉज इवेंचुअली एल्गोरिथम सिर्फ अटेंशन खरीद सकते हैं, इमोशन नहीं. और इसी इमोशन के साथ मुंबई से लेकर दुबई तक, कानपुर से दिल्ली तक, दिस इज द मिर्ची टॉप 20, एंड मैं हूं इस शो का होस्ट सुरेन सुंदरम. लेट्स बिगिन. फर्स्ट अप, गाना नंबर 20. देखो, शुरुआत में कहा था ना मैंने, एंटरटेनमेंट वैसे बहुत हो रहा है, लेकिन याद रखने वाली चीजें कम है. This is Dil Wale Chor by Aditya Rikhari and Shreya Ghoshal that features in Pati, Patni aur Wo Do. Sun lo bhai, yaad reh gaya to achhi baat hai. Number 20.

0: एतबार कुछ गाने अजीब होते हैं, खत्म हो जाते हैं लेकिन उनका मूड थोड़ी देर और साथ चलता है। इट्स मी सुरेन, एंड शायद इसलिए इस हफ्ते जब मैं एक ओथ सेरेमनी देख रहा था तो मेरे दिमाग में बार बार एक फिल्म चल रही थी, नायक अनिल कपूर एक दिन के चीफ मिनिस्टर। और जब हमने वो फिल्म देखी थी, इट फेल्ट वाइल्ड, इट फेल्ट एक्साइटिंग, इट फेल्ट इमोशनल, लेकिन एक चीज क्लियर थी यार, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। बिकॉज लेट्स गेट रियल, कौन सा सुपरस्टार अपनी पीक पे पॉलिटिक्स में जंप करता है? बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने ट्राई किया था, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कमल हसन, लेकिन इस बार फीलिंग थोड़ी अलग थी। शायद इसलिए क्योंकि विजय अभी भी फुल सुपरस्टार मोड में है। He's got young energy, massive fan following, और लोगों के साथ वो इमोशनल कनेक्शन जो सिर्फ स्टार्स के पास होता है। और ओथ सेरेमनी देखते वक्त एक सेकंड के लिए जेन्युइनली लगा, कभी कभी सिनेमा सिर्फ एस्केपिज्म नहीं होता, कभी कभी वो रियलिटी के बहुत नजदीक आ जाता है। और उस मोमेंट में नायक थोड़ी कम फिक्शनल लगी। लुक, आई डोंट नो इफ विजय'स रियल लाइफ रोल एज अ चीफ मिनिस्टर नायक की तरह होगी, बट मैन इट फेल्ट गुड। खैर, अब एक ऐसी आवाज जो पहली बार सुनते ही अटेंशन खींच लेती है, फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, दिस इज मस्कारा, संग बाय निलंजना घोष तस्तिदार, जो दुनिया भर में ए आर रहमान के साथ बेस गिटार प्ले कर चुकी हैं। एंड सच कहूं तो सिर्फ रहमान साहब ही हैं जो किसी म्यूजिशियन में से एक ऐसी हॉन्टिंग आवाज डिस्कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा कतिया करूं वाला मूड है, थोड़ा सा मिस्ट्री है। दिस इज मस्कारा, डेब्यूइंग दिस वीक एट नंबर 18 फ्रॉम मैं वापस आऊंगा।
1: Number 18.

ब्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi, it's hot. Sureen ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 17.

still killing it with its sound, Dhurandhar. Aur honestly, Bollywood ka superhero track record bhi thoda Dhurandhar ki tarah hai. बॉलीवुड को लार्जर देन लाइफ चीजें हमेशा पसंद रही हैं, कभी बहुत सही, कभी बिल्कुल ऑफ टारगेट. बिकॉज इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, हमने हर जॉनर क्रैक कर लिया है, रोमांस, एक्शन, फैमिली ड्रामा, क्राइम सागास. लेकिन सुपर हीरोज, वेल, सिर्फ दो नाम है जो बार बार कॉन्वर्सेशन में आते हैं, एक मिस्टर इंडिया एंड दूसरा क्रिश, और बाकी फ्लाइंग जाट, द्रोणा, भावेश जोशी, ब्रह्मास्त्र. देखो, सब में एफर्ट तो थी, लेकिन वो कन्विक्शन मिसिंग थी. इवन शाहरुख खान रा वन, जिसको वक्त ने उतना सही ट्रीटमेंट नहीं दिया था. और अब सडनली न्यूज आ रही है कि राज और डीके एक सुपर हीरो फिल्म डेवलप कर रहे हैं विद नन अदर देन सलमान खान. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सलमान खान एक रिटायर्ड एजिंग सुपर हीरो प्ले करेंगे. नाउ दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, बिकॉज सच क्या है, सलमान भाई को कमबैक की जरूरत नहीं है यार, सलमान भाई को डायरेक्टर्स की जरूरत है. आप जरा नोटिस करो, राधे, किसी का भाई किसी की जान, इन फिल्म्स के डायरेक्टर आपको याद भी हैं? एंड गलवान की तो प्लीज बात भी ना करो, वो आएगी कि नहीं आएगी ना भाई को पता है ना किसी की जान को. इसलिए राज एंड डीके एक्साइटिंग लगते हैं, उनके पास वो टोन है, वो ह्यूमर है, और फ्लॉड हीरोज को इंटरेस्टिंग बनाने का दिमाग भी है. लेकिन हाँ, बॉलीवुड ने सुपर हीरो जॉनर में हमें ट्रस्ट इश्यूज दिए हैं, इसलिए एक्साइटमेंट तो है पर एक्सपेक्टेशंस भी कंट्रोल्ड है. नेक्स्ट अप इस गाना नंबर 15, रूप दीरानी फ्रॉम पति पत्नी और वो दो. फिल्म है तो 2026 की, पर पता नहीं क्यों लगता है इट्स स्टक इन 2006. नंबर 15.

0: ग्रीन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot.
1: Number 14.

0: तेरा हो जाऊं, और टिपिकली सचिन जिगर सॉन्ग विद जुनीता गांधी एंड स्टेबिन बेन। एंड अरिजीत के रिटायरमेंट के बाद थैंक गॉड न्यू वॉइसेस आर इमर्जिंग, वरना हर हीरो की एक ही आवाज हुआ करती थी। वैसे भी बॉलीवुड में हीरो बनना शायद इजी है, लेकिन हीरो बने रहना, नाउ दैट इज द रियल गेम, स्पेशली आज के वक्त में जहां फ्राइडे मॉर्निंग से ज्यादा ब्रूटल फ्राइडे इवनिंग का सोशल मीडिया होता है। और हाल ही में वरुण धवन की एक बात मुझे याद आ गई, उस बात में एक सरप्राइजिंग सच्चाई थी, क्योंकि फॉर अ फ्यू सेकंड्स वरुण के अंदर का एक्टर नहीं, वरुण की इनसिक्योरिटी बोल रही थी।
1: मुझे एक्चुअली बिल्कुल टेंशन नहीं थी पहली फिल्म में। द मोस्ट स्ट्रेस आई फेल्ट वाज व्हेन मैं तेरा हीरो वाज रिलीज। मैं तेरा हीरो बिकॉज आई फेल्ट कि दिस वाज अ फिल्म, स्टूडेंट वाज अ फिल्म विद थ्री एक्टर्स। चलो यू नो ऑल द अदर एक्टर्स हैव गॉट वर्क आफ्टर दैट एज वेल, आई हैव नॉट। नाउ आई एम डूइंग दिस फिल्म विच इज अ कम्प्लीट कॉमेडी फिल्म, न्यू एक्टर्स ये जोन या ये सुर नहीं छेड़ रहे आज के टाइम में। अभी मैं ये कैसे ऑडियंस को बोलूं कि यार मैं सच्ची में हीरो हूं, मुझे सीरियसली लो, मैं कॉमेडी करना चाहता हूं, एक्शन करना चाहता हूं, रोमांस करना चाहता हूं, मैं सब कुछ करूंगा ऑडियंस के लिए, जस्ट गिव मी अ चांस। एंड लिटरली आई क्लॉड एंड फॉट एंड क्राइड एंड डन एवरीथिंग पॉसिबल इन दैट फिल्म। मुझे लगता है भगवान ने भी मुझे बहुत टेस्ट किया, लिटरली मेरा करियर वाज ऑन। इफ मैं तेरा हीरो डिडंट वर्क एज अ सोलो हीरो फिल्म फॉर मी, आई वुड नॉट Be sitting here today.
0: और ये अमेजिंग है क्योंकि बाहर से स्टारडम बहुत ग्लॉसी दिखती है, लॉन्चेस, हिट्स, फेम, फैन फॉलोइंग, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक डर सबको होता है। What if the audience stops choosing me? What if they stop loving me? शायद इसलिए वरुण की बोली ये बात कनेक्ट करती है, because for one moment वरुण धवन स्टार नहीं लगे, बस एक एक्टर लगे जो सरवाइव करना चाहते हैं। और अब एक गाना जो ऑफिशियली सैयारा गैंग का हिस्सा बन गया है, वही लॉन्गिंग, वही सॉफ्ट हार्ट ब्रेक, वही लेट नाइट फीलिंग, फ्रॉम चांद मेरा दिल। दिस इज द टाइटल ट्रैक, चांद मेरा दिल, बाय फहीम अब्दुल्ला ऑन नंबर 13।
2: नंबर 13।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 12

जाइए सजना। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ अच्छे नहीं लगते, वो एक पूरा वक्त याद दिला देते हैं, एक फेज, एक इंसान, एक वर्जन ऑफ योरसेल्फ। हाय, इट्स मी सुरेन। एंड हर डेकेड का एक साउंड होता है, और कभी कभी कोई एल्बम उस पूरे दौर की इमोशनल मेमोरी बन जाती है। 90s में देयर वाज अ रोजा, अ दिल से, अ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अ ताल, अ हम आपके हैं कौन, एंड देन द लास्ट डेकेड 2010s, उसमें एक रॉकस्टार थी, ये जवानी है दीवानी थी, एंड ऑब्वियसली आशिकी 2। और ऑनेस्टली स्ट्रीमिंग ईरा में हिट सॉन्ग्स तो बहुत आए हैं, लेकिन कंप्लीट एल्बम्स जहां हर गाना लोगों की लाइफ का पार्ट बन जाए, वो थोड़ा रेयर हो गया है। इसलिए धुरंधर इंटरेस्टिंग लगती है, बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बॉलीवुड को फिर से एक फुल एल्बम मोमेंट मिला है। लेकिन जब भी डिफाइनिंग रोमांटिक एल्बम्स की बात होगी, आशिकी 2 अलग खड़ी होगी। तुम ही हो वॉज ऑल अबाउट लॉन्गिंग, लेकिन एक और गाना था इस एल्बम में जो और डेंजरस था इमोशनली, बिकॉज इट वॉज नॉट हार्ट ब्रेक, इट वॉज कन्फ्यूजन। वो फीलिंग जब दिल ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है, पर आप खुद से अभी भी सवाल पूछ रहे होते हो, एंड मे बी दैट्स व्हाई दिस सॉन्ग स्टिल हिट्स सो हार्ड। वैसे नंबर 11 पे इस हफ्ते है रामजिया के भला करेंगे फ्रॉम भूत बंगला, दैट कंटिन्यूज इट्स क्लाइम। लेकिन राइट नाउ माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम आशिकी 2, इसे गाया है अरिजीत और पलक मुछाल ने। दिस इज चाहूं मैं आना।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: Number 10.

वहीं दिल लगाया। और कभी कभी ना एक गाना हिट होने से पहले ही लोगों का बन चुका होता है, इंटरनेट पे, रील्स में, रैंडम लेट नाइट स्क्रोल्स में। और कुछ महीने पहले ऐसी ही दो आवाजें अचानक हर जगह सुनाई देने लगी थी, कृष मंडल एंड किशोर मंडल, दो भाई, नो बिग सेटअप, नो इंडस्ट्री लॉन्च, अस टैलेंट। और एक अजीब सी ऑनेस्टी, और मैं खुद इन दोनों को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ, एंड इनका एक कवर तो अलग ही लेवल पे चला गया था।

0: See, that's the thing. Perfect नहीं है, polished भी नहीं है, लेकिन इस गाने में वो feel है, और शायद इसलिए लोग इनसे connect कर गए.
1: And फिर Bollywood enter हुआ.
0: Song को scale मिल गया,
1: stars आ गए, gloss आ गया, बादशाह आ गए.
0: And suddenly जिन दो लड़कों की वजह से ये गाना चला, वो अपने ही गाने में background में खड़े नजर आए,
1: like extras. And that felt strange.
0: और थोड़ा सा दुख भी हुआ. नॉट बिकॉज सक्सेस गलत है, ऑफ कोर्स नहीं है यार, लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री टैलेंट को एलिवेट करती है और कभी कभी उसे डेकोरेट कर देती है. इंटरनेट ने उन्हें स्टार्स बनाया था, बॉलीवुड ने उन्हें एस्थेटिक बना दिया है.
1: लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिकॉज रियल कनेक्शन इवेंचुअली अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है. और अब एक और शादी के बाद के चक्करों वाला गाना, नंबर 9 पे, फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है. दिस इज व्याह करवा दो जी,
0: यू आर ऑन द मिर्ची टॉप 20. नंबर 9.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची इट्स हॉट। के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर

मैं और तू नंबर 8 और इस हफ्ते मैं सुरेंद्र सुंदरम और तुम और पूरा इंटरनेट रेड कार्पेट्स पे था। पहले द मेट गाला और अब द कैन फिल्म फेस्टिवल। ऐश्वर्या राय बच्चन स्टेयरकेस की मालकिन जैसे हमेशा से रही हैं। There's Alia Bhatt, Aditi Rao Hydri, Jacqueline Fernandez and of course influencers जो full attendance में होंगे, no absentees। Cannes जो कभी world cinema का सबसे बड़ा stage हुआ करता था, अब visibility का Olympics बन गया है। कौन trend हुआ, कौन meme बना, कौन reels पे छा गया। और ये भी सच है, कई लोग वहाँ film promote करने नहीं जाते, खुद को promote करने जाते हैं। देखो मैं judge नहीं कर रहा, 2026 में अटेंशन भी एक करेंसी है और जिस दुनिया में 15 सेकंड की रील किसी को ओवरनाइट सेंसेशन बना सकती है,

वहां रेड कार्पेट भी कंटेंट बन जाता है। बस इतना कहना था, स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन के बाद सर्टिफिकेट मिलता था, यहाँ ब्रांड डील्स मिलते हैं। वो बीच में जो आपने सैयारा सुना, जस्ट टू रिमाइंड यू, दैट वाज गाना नंबर 7। एंड जो लोग एक्चुअली कुछ फील करते हैं, एक्चुअली कुछ क्रिएट करते हैं, वो यहाँ है इस काउंटडाउन पे हर हफ्ते। नंबर 6 पर है विशाल मिश्रा एंड उनकी दीवानियत। नंबर 6।

0: Mirchi. It's hot. Sureen ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Number 5.

वाओ, और ऑनेस्टली डेविड धवन का नाम आते ही एक पूरा 90s यूनिवर्स एक्टिवेट हो जाता है। आई एम सरीन एंड 90s की बात हो रही है तो उसी दौर में एक कंपोजर थे जो बॉलीवुड के रूल बुक पे चल ही नहीं रहे थे, बिजू शाह। एंड यू नो व्हाट, 90s का बॉलीवुड मेलोडी पे चल रहा था।

विजू शाह आ गए। सडनली म्यूजिक से रोमांटिक नहीं रहा, स्टाइलाइज्ड हो गया, ड्रामेटिक हो गया, थोड़ा डेंजरस हो गया। एंड देन 1997 में भी सीन थोड़ा सिमिलर था।

0: रूम की लाइटिंग ही चेंज हो गई। दैट वॉज द विजू शाह इफेक्ट। उस वक्त उनका म्यूजिक लाउड लगता था, आज विंटेज कूल लगता है। और शायद इसलिए ओटीटी शोज लाइक बैट्स ऑफ बॉलीवुड, फिल्म्स लाइक धुरंधर, क्रिएटर्स सब फिर से उनकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि विजू शाह गाने नहीं बना रहे थे, एटमोस्फियर बना रहे थे, माहौल बना रहे थे। एंड सच ये है मिलॉर्ड, बॉलीवुड फाइनली उनके साउंड के साथ कैच अप कर रहा है। What I'm going to play you next is one of the coolest title track of the 90s. It still sounds relevant even in 2026. This is Gupt. This is by Viju Shah.
1: Top 20 Rewind.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 3

Sizda has climbed to number two, and now suddenly the conversation gets much, much bigger. It's me, Suren, और आज मैं आपको एक किताब के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. बात है 2010 की अमीश त्रिपाठी और उनकी लिखी हुई किताब The Immortals of Melhua, शिवा ट्रिलॉजी, उसका पहला हिस्सा. और जब मैंने ये किताब पहली बार उठाई तो मैं बहुत बहुत अंदर चला गया और सच कह रहा हूं बाहर ही नहीं निकल पाया. ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक पूरी दुनिया थी, एक सिविलाइजेशन, एक कॉन्फ्लिक्ट और एक इंसान जो भगवान बन जाता है. और जब आप इस किताब को पढ़ते हैं आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ते, आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप महसूस करते हैं, आप वहां मौजूद होते हैं. और फिर करण जौहर ने इस किताब के राइट्स खरीद लिए. सालों तक कुछ नहीं हुआ, नो फिल्म, नो अपडेट, नो नथिंग. और फिर 2024 में अमीश त्रिपाठी ने कंफर्म किया राइट्स वापस आ गए हैं. मैं हैरान नहीं हुआ क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था, इतना कॉम्प्लेक्स था, इतनी रिलीजियस सेंसिटिविटी थी कि अगर आपकी विजन और आपकी एग्जीक्यूशन में एक भी चूक होती ना तो दुनिया आपको माफ नहीं करती. एंड अब खबर है, एंड इट्स नॉट कंफर्म येट, कि रणवीर सिंह धुरंधर की कामयाबी के बाद इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने वाले हैं. और मैं जानता हूं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या रणवीर सिंह ये रोल कर सकते हैं, क्या बॉलीवुड इस फिल्म को जस्टिस दे सकता है. लेकिन ये सवाल ही गलत है यार. असली सवाल ये है कि क्या कोई भी फिल्म, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी बजट कभी वो दुनिया बना सकता है जो आपने अपने दिमाग में बनाई थी जब आपने वो किताब पहली बार पढ़ी थी. शिवा ट्रिलॉजी द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ डिजर्व टू बी मेड, लेकिन सिर्फ तब जब कोई फिल्म मेकर इतना ब्रेव हो कि वो अपनी विजन को हजारों लोगों की इमेजिनेशन से ऊपर रख सके. अभी तक वो बंदा आया नहीं था लेकिन शायद अब आ चुका है. इस हफ्ते नंबर वन पे वो गाना है, वो फिल्म है जिसके बारे में भी हमने कुछ ऐसा ही कहा था, यार धुरंधर इतनी बड़ी हो जाएगी 13 हफ्तों के बाद. वो लोग कहाँ हैं, धुरंधर कहाँ है और शरारत कहाँ है, आप वो खुद देख लो. नंबर वन आदित्य धर, धुरंधर, शरारत, 13वां हफ्ता. नंबर वन.

शरारत 13 हफ्ते ऑन नंबर 1। एंड सच ये है कि इस गाने की जर्नी देखकर एक बात समझ आ जाती है कि हिट्स आते रहेंगे, लेकिन कभी कभी एक गाना सिर्फ चार्ट बस्टर नहीं बनता, वो पूरे वक्त का साउंड ट्रैक बन जाता है, और शायद शरारत वही गाना है। किसी के साथ ये था इस बार का मिर्ची।

Mirchi. It's hot.

0: वीकेंड आ गया और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफिशियली सीन पे चली गई। वेलकम टू क्लब मिर्ची पीपल, डीजे रिचर्ड मिर्ची और योनतिका बैक अगेन विद दिस वीकेंड पार्टी डेस्टिनेशन। हे पार्टी स्क्वाड, वॉल्यूम को फुल करो, डीजे रिचर्ड के साथ मूड उठने वाला है सीधे 100 आसमां के ऊपर। लाइट्स ऑन, ड्रामा ऑन एंड वीकेंड का सीन शुरू करे, लेट्स गो।
1: When I met you in the summer,

वीकेंड का हार्ट ब्रेक भी ग्लैमरस लगता है क्योंकि बैकग्राउंड में बीट बज रहा है, राइट? क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका, तो चलो दिल पर एक साथ डांस फ्लोर पे आ जाए।

0: Mirchi. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

सबका एक दोस्त है जो खुद को इंटरनेशनल परफॉर्मर समझता है। इन बिटवीन ब्रेक्स आवन और जावन के बीच में एक इंटरनेशनल ट्रैक आपके लिए, गाने का नाम है ज़ेरुसलेमा।

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोन देगा। आज इमोशंस की रीमिक्स मूड पे है। पहले पार्टी, फिर प्यार, फिर अननेसेसरी ओवरथिंकिंग, ऑल इन योर रेड आउटफिट।

दिमाग में एक दोस्त जरूर होता है जो हर गाने पे बोलता है, अरे ये तो मेरा सॉन्ग है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, लेट्स गो सैयारा।

up, Mirchi, with DJ Richard and Mirchi. Oi, Ontika, baby. No, not just baby. Let's say, hey, baby. कल क्या होगा वो मंडे सोचेंगे, आज से वाइब चेक होगा. और गाने का नाम है मस्त कलंदर. Let's go.

वीकेंड पे आंखें खुली हो या बंद, सपने सब डांस फ्लोर वाले ही आते हैं। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, वेलकम बैक पीपल। चलो फिर से करें मोहब्बतें।

Welcome back once again. Club मिर्ची जा रही है with DJ Richard and मिर्ची ओयोंतिका. Party का graph अब सीधा ऊपर जा रहा है और neighbors का BP भी. तो हमारे ताल से ताल मिलाइए और नाचना शुरू कीजिए.

डांस फ्लोर क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और यूं देखा। जो लोग बोलते हैं मैं डांस नहीं करता, उन्हें बस उनका गाना बजने का इंतजार होता है। तो चलो सभी डांस फ्लोर पे आ जाओ क्योंकि असली हंगामा हो गया।

वीकेंड पे सबके अंदर का हिडन परफॉर्मर उसको बाहर लाएंगे और गाने पे नाचेंगे, क्योंकि अरे दीवानो सभी को बनना है डॉन। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, दिस इज टू इनफिनिटी डांसिंग, लेट्स गो।

0: वीकेंड का असली कार्डियो जिम नहीं है बॉस, तीन गाने बैक टू बैक पे डांस करना, जब गाना बजेगा लेजी लम्हे, लेजीनेस का तो जगह ही नहीं है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंतिका राइट नाउ, जॉइन अस ऑन द डांस फ्लोर।
1: दामे उन गर
2: उनके
1: उन गर
2: उनके
1: दामे उन
2: ओके।

0: वीकेंड ऑफिशियली एंट्री मार चुका है। जो लोग बोलते थे इस बार घर पे चिल करेंगे, वो भी आप डांस फ्लोर के जीपीएस पे ही मिलेंगे। लव मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, ब्लू आईज ऑन योर रेडियो सेट्स राइट नाउ।
1: प्रिंसिपल बीपी बिशोजो के फैन है।

चाहिए जहाँ दो चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाए, एक बीट, दूसरी एक्साइटमेंट. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका. वेलकम बैक. कयामत करेंगे फ्रॉम हाउसफुल 5. लेट्स गो.

ढिलो एंड श्रेया घोषाल विद थोड़ी सी दारू. हाँ ठीक है, पर नॉट ड्राइविंग वाइल थोड़ी सी दारू इज इनसाइड ऑफ यू. ओके, हैव फन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज तुम हो तो लव मिर्ची पे मस्ती है.

वीकेंड पे आंखें खुली हो या बंद, सपने सब डांस फ्लोर वाले ही आते हैं। क्लब मिर्ची में डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, वेलकम बैक पीपल। चलो फिर से करें मोहब्बतें।

फैन क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। पार्टी का ग्राफ अब सीधा ऊपर जा रहा है और नेबर्स का बीपी भी। तो हमारे ताल से ताल मिलाइए और नाचना शुरू कीजिए।

द डांस फ्लोर क्लब मिर्ची जा रही है वो डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल योर देगा। जो लोग बोलते हैं मैं डांस नहीं करता, उन्हें बस उनका गाना बजने का इंतजार होता है। तो चलो सभी डांस फ्लोर पे आ जाओ क्योंकि असली हंगामा हो गया।

कोई डिसेंट बिहेव नहीं करेगा वीकेंड पे, सबके अंदर का हिडन परफॉर्मर उसको बाहर लाएंगे और गाने पे नाचेंगे, क्योंकि अरे दीवानो सभी को बनना है डॉन। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, दिस इज टू इनफिनिटी डांसिंग, लेट्स गो।

0: वीकेंड का असली कार्डियो जिम नहीं है बॉस, तीन गाने बैक टू बैक पे डांस करना, जब गाना बजेगा लेजी लम्हे, लेजीनेस का तो जगह ही नहीं है। क्लब मिर्ची मिर्ची जब चुआ मिर्ची ऑन ऑन दिखा राइट नाउ, जॉइन अस ऑन द डांस फ्लोर।
1: Dame un grr.
2: Un qué?
1: Un grr.
2: Un qué?
1: Dame un
2: okay.
1: Dame un

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen.

0: वीकेंड ऑफिशियली एंट्री मार चुका है। जो लोग बोलते थे इस बार घर पे चिल करेंगे, वो भी आप डांस फ्लोर के जीपीएस पे ही मिलेंगे। लव मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, ब्लू आईज ऑन योर रेडियो सेट्स राइट नाउ।
1: प्रिंसिपल बिपी बिशो जो कि फैन है।

होनी चाहिए जहाँ दो चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाए, एक बीट, दूसरी एक्साइटमेंट. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका. वेलकम बैक. कयामत करेंगे फ्रॉम हाउसफुल 5. लेट्स गो.

गया घोषाल विद थोड़ी सी दारू. हाँ ठीक है, पर नॉट ड्राइविंग वाइल थोड़ी सी दारू इज इनसाइड ऑफ यू. ओके, हैव फन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज तुम हो तो लव मिर्ची पे मस्ती है.

0: Mirchi. It's hot.
1: Saathi re, thoda theher ja, abhi raaste

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बांटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई,

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi.

0: The views expressed in the Devdutt Patnaik show are the hosts alone, not the channels.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
1: The Devdutt Patnaik show.
0: On Radio Mirchi, it's hot.
3: Hi everyone, aap sun rahe hain The Devdutt Patnaik show on Radio Mirchi.
1: Devdutt ka day starter. Day starter.
3: तो आज हम हनुमान के बारे में बात करेंगे। क्यों हनुमान? बिकॉज यू नो टुडे मॉर्निंग मैं सूर्य नमस्कार कर रहा था। डॉक्टर्स हैव टोल्ड मी कि सूर्य नमस्कार सुबह करना ही है बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट। और मैंने ये सुना है कि सूर्य नमस्कार वॉज डिजाइंड बाय हनुमान जी, और हनुमान जी ने ये सूर्य नमस्कार किया था क्योंकि उनके गुरु थे सूर्य भगवान। द सन वॉज हिज टीचर, हिज गुरु। तो एज ए दक्षिणा उन्होंने सूर्य नमस्कार की निर्माण की थी। तो जब मैं सूर्य नमस्कार आज कर रहा था तो हनुमान जी की याद आ रही थी, एंड आई सेड यू नो व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट द डे देन बाय डिस्कसिंग हनुमान जी के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में। क्योंकि देवदत्त पटनायक शो में हम क्या डिस्कस करते हैं? हम वेद पुराण, हमारे रीति रिवाज के बारे में डिस्कस करते हैं, यज्ञ हवन पूजा का डिस्कशन करते हैं, उत्सव के बारे में डिस्कस करते हैं, हमारे कल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आध्यात्मिक कल्चर है, जो भारत की एक परंपरा है, हमारी संप्रदाय है, एंड दीज थॉट्स इन अ वेरी पॉजिटिव सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इंप्रूव कर सकता है। यू नो सूर्य नमस्कार फॉर एग्जांपल हेल्प्स आवर बॉडी, एंड यू नो यू लुक एट द मॉर्निंग राइजिंग सन एंड द सन इज टेलिंग यू गेट अप एंड मूव ऑन, एंड दैट्स व्हाट आई डू। सो आज पूरे दिन, आज पूरे शो में हम डिस्कस करेंगे हनुमान जी के बारे में, मारुति के बारे में, अंजनेय के बारे में, उनके अलग अलग कहानियों के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
0: माइथोलॉजी का वो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द जो सबसे पहले हनुमान के मुंह से निकला, क्या था? बताएंगे देवदत्त।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: द देवदत्त पटनायक शो,
2: कल भी आज भी
1: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आज हम हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं, और हनुमान जी की जब बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज जो हमारे मन में आना चाहिए इज अबाउट स्ट्रेंथ, बिकॉज हनुमान जी इज वेरी स्ट्रांग। यू नो, एक चीज हम लोग हमेशा बोलते हैं कि वी हैव बिकम वेरी मॉडर्न, यू नो, आजकल लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, पहले जमाने में हम लोग बैकवर्ड थे, अभी हम यू नो वी हैव बिकम कूल बिकॉज हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास गाड़ियां हैं। बट यू नो, एक चीज कनेक्ट करता है सब कुछ, यू नो, कल भी आज भी सब समय, इट ऑल टाइम्स, देयर इज वन थिंग व्हिच कनेक्ट्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य जो है ना वो असुरक्षित होता है, इनसिक्योर होता है, एंड वी आर ऑल इनसिक्योर। कुछ ना कुछ, जितनी अमीर हो, गरीब हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग्स आर इनसिक्योर। और जब हम इनसिक्योरिटी की बात करते हैं तो भगवान की बात आती है, और हिंदू धर्म में हनुमान जी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि ही इज, जैसे बनारस में कहते हैं, वो संकट मोचन है, ही टेक्स अवे द प्रॉब्लम्स, हमारे जो असुरक्षता है ही टेक्स इट अवे, एंड ही इज अ वेरी यूनिक गॉड, बिकॉज एक बलवान तो है ही, उनके हाथ में तो गदा होता है, एंड इज वेरी वेरी स्ट्रांग, बट एट अनदर लेवल ही इज ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल। वो कविताओं से जुड़े हुए हैं, लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि पहली बार संस्कृत शब्द उन्हीं के मुंह से निकला था, सो ही इज अ विद्वान एज वेल एज बलवान, एंड वी ऑलवेज टेंड टू सेपरेट इट। हम हमेशा बोलते हैं कि जो बलवान होता है वो विद्वान नहीं हो सकता, और जो विद्वान होता है वो बलवान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? यू कैन गो टू द जिम एंड बी यू नो स्ट्रांग एंड डू एक्सरसाइज एंड बी गुड इन स्पोर्ट, बट यू कैन ऑल्सो बी गुड इन स्टडीज, एंड यू कैन बी अ स्मार्ट गाय, यू कैन गो टू द बेस्ट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स, बिजनेस, यू नो, हम ये डिवाइड करते रहते हैं दुनिया को। और आई थिंक ये आइडिया है, मैं जब भी हनुमान के बारे में सोचता हूँ मैं बोलता हूँ कि कल भी वो रेलिवेंट थे, आज भी वो रेलिवेंट हैं, क्योंकि वो बलवान विद्वान हैं, वो हमारे भीतर के पशु को जागृत करते हैं, रिमाइंड्स अस दैट देयर इज एन एनिमल इनसाइड अस, और हमें मनुष्य बनना है। यू नो, ही इज अ वानर, वन का नर, मींस सम पीपल से इट इज मंकी, सम पीपल से इट इज एप लाइक मैन, सम से इट इज अ ट्राइबल पर्सन, लेकिन क्या है कि ये एक कॉन्सेप्ट है। आवर जर्नी, हमारी जो यात्रा है, इज फ्रॉम पशु टू पुरुष एंड टू बिकम बलवान एंड विद्वान। ऐसे ही बातें हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। स्टे ट्यून्ड, बिकॉज लॉट्स ऑफ स्टोरीज आर कमिंग योर वे। वी आर गोइंग टू डिस्कस हनुमान जी के स्टोरीज, नॉट जस्ट फ्रॉम रामायण बट फ्रॉम मेनी फोक ट्रेडिशंस। तो स्टे ट्यून्ड,
2: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
1: द देवदत्त पटनायक शो। हनुमान ने कैसे तोड़ा रावण का घमंड, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची। आज हम हनुमान के बारे में बात करेंगे। माई फेवरेट हनुमान स्टोरी इज जब हनुमान रावण को मिलता है लंका में, एंड दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग स्टोरी। तो रावण इज द किंग ऑफ लंका, राक्षसों के राजा हैं, ही इज एजुकेटेड, ही नोज नाट्य शास्त्र, उन्हें गंधर्व विद्या, उनको वेदों का ज्ञान है, उनको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है, वास्तु शास्त्र का ज्ञान है, ही इज एजुकेटेड एंड इज वेरी पावरफुल। उनके पास पुष्पक विमान है, वो सोने के लंका में राज करते हैं, और उनको पता चलता है कि उनके अशोक वाटिका में एक बंदर ने कुछ तो गड़बड़ किया है, और बंदर को पकड़ के लोग लेके आ रहे हैं। एक बंदर कौन है? और जब बंदर आता है उसके सामने, वो बंदर संस्कृत में बात करता है उनके साथ, एकदम परफेक्ट संस्कृत में बात करता है। तो ही शॉक्ड, बिकॉज संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा है, विद्वानों की भाषा है, ये बंदर कैसे बात कर सकता है? और फिर वो कहता है, बंदर बहुत ही बहुत डेंजरस शब्द बोलता है, कि कहता है कि मैं राम का दूत हूं, आई एम अ मैसेंजर ऑफ राम। तो अगर मैं दूत हूँ तो यू शुड ट्रीट मी लाइक अ दूत, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। आप मुझे बांध के लाए हो यहाँ पे, मुझे एक आसन दीजिए, मेरा सत्कार कीजिए, ताकि मैं आपको एक मैसेज दे सकूँ। और रावण कहता है कि बंदर, दूत, राम, ये कौन है? एंड ही इज लाइक क्वाइट डिस्गस्टेड, बहुत डिसमिसिव होता है कि चल चल, अपने आप को समझ रहा है राम दूत। तो हनुमान जी बोलते हैं कि देख, कोई भी तुम्हारे घर में आता है ना, तुम उसे सत्कार करते हो, इंसल्ट नहीं करते हो, मैं तुम्हारे घर पहले बार आया हूँ, यू शुड ट्रीट मी नाइसली। और अगर तुम, यू डोंट ट्रीट मी नाइसली, मेरा इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं अपने आप को अच्छे से मैनेज कर लूंगा, तुम अगर मुझे आसन नहीं दोगे तो मैं अपने आप को आसन दे दूंगा। और अपनी पूंछ से वो एक आसन बनाते हैं, और एक ऐसे आसन बनाते हैं जो रावण के सिंहासन से ऊपर होता है। मतलब रावण जो हमेशा सब लोगों को नीचे देखता है, वो हनुमान जी को ऊपर देखता है, और उसका घमंड वहां पे इज डिस्ट्रॉयड, कि ये बंदर संस्कृत बोलने वाला उसको एक सेकंड में बताता है कि भैया तेरी औकात क्या है। ये जो स्टोरी है ना, बहुत ही सिंपल स्टोरी है, लेकिन सबको समझ में आता है। बताने से पता चलता है कि रावण हमारी जिंदगी में बहुत, रावण होते हैं, हम भी रावण होते हैं। सबको, हम चाहते हैं कि सब हमारे नीचे बैठे रहें, हम लोगों को, वी जज पीपल कि कैसे लोग होने चाहिए, बट सामने वाला हनुमान हो सकता है और वो हमें औकात दिखा देगा बहुत ही शांति से। और ये कहानियों में से ऐसी छोटी छोटी ज्ञान मिलती है, हमारा जो संस्कृति है, भारत धर्म है, हमारा जो कल्चर है, वो कहानियों के माध्यम से आता है। जैसे एक छोटी सी एपिसोड रामायण की, हनुमान जी और रावण के बीच में। एंड ऐसे ही स्टोरीज आई विल बी डिस्कसिंग ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। तो स्टे ट्यून्ड
1: ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाया जाता है, बताएंगे देवदत्त। Keep listening.

0: It's hot.
1: Mitchie, it's hot.
2: तो वेलकम टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान को डिस्कस कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गॉड्स इन हिंदुइज्म।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
3: द देवदत्त पटनायक शो।
1: कॉलिंग देवदत्त
3: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
2: गांव-गांव में उनकी मूर्तियां होती हैं, पूजा होती है। सो इफ आई एम श्योर यू हैव मेनी क्वेश्चंस ऑन हनुमान, तो जो भी क्वेश्चन है प्लीज पिक अप द फोन एंड आस्क मी द क्वेश्चन। आई एम एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू। हेलो, देवदत्त हियर।
4: हाय, माय नेम इज अक्षता एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई। मेरा क्वेश्चन ये है कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या?
2: थैंक्स अक्षता फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये जो सिंदूर है, लाल रंग जो होता है, ये भारत में इसे मंगल मतलब ऑस्पिशियस सिंबल माना जाता है, ऑस्पिशियस कलर माना जाता है, और हनुमान जी को हम मंगल मूर्ति भी मानते हैं। सो इट इज़ अ सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस, इसलिए उनको लाल रंग दिया जाता है। गणपति जी को भी मंगल मूर्ति मानते हैं, इसलिए उसके लाल रंग दिया जाता है। सो लाल रंग मांगल्य, मांगल्य इज प्रॉस्पेरिटी, एफ्लुएंस, गुड लक, चार्म, तो ये देवी के साथ जुड़ा हुआ है। और नॉर्मली लाल रंग हम देवी को जोड़ते थे, और बोथ गणेश एंड हनुमान आर लिंक्ड टू द शाक्त परंपरा, और इसलिए हनुमान जी की मूर्ति को मांगल्य बनाने के लिए, नहीं तो वो बहुत ही यू नो वेरी मैस्कुलिन इमेज जो है, वायलेंट इमेज है, बिकॉज उसके हाथ में वेपन्स हैं एंड ही इज फाइटिंग। लेकिन जब आप लाल लगाते हो तो वो शुभ बन जाता है, दैट इज द रीजन। आजकल लोग ऑरेंज कलर दे रहे हैं जो वैरागियों का रंग है, लेकिन मंगल रंग इज लाल, इसलिए शादी का जोड़ा भी लाल होता है, चूड़ियां लाल होती हैं, दैट इज द रीजन। ऑफ कोर्स देयर आर स्टोरीज कि उन्होंने देखा कि सीता जी लाल रंग सिंदूर डाल रही हैं, इसलिए उन्होंने अपने पूरे शरीर को ढक दिया, ये सब लोक कथाएं हैं। लेकिन क्रियाओं के तरफ फ्रॉम रिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, लाल जहां लगा जाएगा, जैसे अलता होगा, ये होगा, इसे मंगल का शुभ है, शाक्त सिंबल है, देवी का चिन्ह है। That is the purpose. All
4: right. Thank you so much for the answer. Thank you.
2: Welcome, Akshata.
4: Yes.
2: तो अक्षता का question was about सिंदूर रंग, और ये लाल रंग जो होता है ये traditional color है जो हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ है। नॉर्मली जो मेल गॉड्स होते हैं उनको लाल रंग वेरी रेयरली दिया जाता है, क्योंकि हनुमान जी को देवी का सेवक माना गया है, वो प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं, इसलिए लाल रंग दिया जाता है।
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
3: The Devdutt Patnaik Show.
5: क्या है हनुमान और पंचमुखी हनुमान में अंतर, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: Mirchi, it's hot.
1: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांस में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभावपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
1: द देवदत्त पटनायक शो
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: सो नाउ आई वांट टू डिस्कस माय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इमेजेस ऑफ हनुमान, जो पंचमुखी हनुमान जिसके कहते हैं। तो पंचमुखी हनुमान की मूर्ति अगर आप देखे होंगे तो इट इज नॉट, यू नो, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टैचू। नॉर्मली हनुमान जी की मूर्ति राम के मंदिर में होती है और वो वहां पे एक सेवक के रूप में, एक दास के रूप में हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं राम के चरण पे। लेकिन पंचमुखी हनुमान जो होता है वो मंदिर में केवल हनुमान जी की मूर्ति होती है वो, और उनके दो हाथ नहीं, उनके 10 हाथ होते हैं, और उनके एक सर नहीं 5 सर होते हैं, और एक ही सर वानर का रूप लेता है। बाकी 4 जो है, एक घोड़े का होता है, एक शेर का होता है, एक वराह या जंगली सुअर का होता है, और एक गरुड़ का होता है। पंचमुखी हनुमान की स्टोरी हमें अद्भुत रामायण से आती है। अद्भुत रामायण में कहते हैं कि राम गेट्स डिसअपियर्स और उसे पाताल लोक में कोई लेके चला जाता है, और हनुमान जी हैज नाउ टू डू एवरीथिंग एंड फाइंड रेस्क्यू राम। तो स्टोरी है, हाउ डज हनुमान गो टू पाताल लोक। इसलिए पंचमुखी हनुमान को कभी कभी लोग पाताली हनुमान भी बोलते हैं, और पाताली हनुमान कुछ मंदिरों में उन्हें अपसाइड डाउन रखा जाता है बिकॉज वो पाताल में गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग, ये पंचमुखी क्यों बने हैं? क्योंकि हनुमान जी वहां पे डिस्कवर्स कि वो केवल वानर नहीं है, उनके अंदर बहुत क्षमता है। वो गरुड़ के जैसे भी काम कर सकते हैं, वो वराह के जैसे काम कर सकते हैं, वो शेर की भांति काम कर सकते हैं, वो घोड़े के जैसे भी काम कर सकते हैं। उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं। ये मूर्ति है दिखाने के लिए कि जो एक वानर है वो महाबली कैसे बना। सो रामदास से महाबली की यात्रा, द ट्रांसफॉर्मेशन, जो सिंपल एक रामदास था जो

डिसीजंस लेता था, वो कार्य करता था, जो राम बोलते थे वो करते थे। लेकिन पंचमुखी हनुमान के जगह में वो कर्ता बन जाते हैं। ही इज द पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव, ही सॉल्व्स प्रॉब्लम्स और अंदर की अपनी जो पोटेंशियल है डिस्कवर करते हैं। आई एम श्योर आपके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है टू डिस्कवर एंड यू मस्ट फाइंड दिस पोटेंशियल सो दैट द होल डे यू फाइंड द हनुमान इनसाइड यू एंड क्रॉस द ओशन टू सक्सेस। So, best wishes and stay tuned for more interesting questions and answers and stories on the Devdutt Patnaik show on Mirchi.

वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची। यू नो, मैं हनुमान के बारे में बहुत लिखा हूँ मेरी किताबों में, मेरे एसेज में। मैंने हनुमान चालीसा के ऊपर एक किताब लिखी है, माय हनुमान चालीसा, जहाँ पे यू नो हर जो दोहा चौपाई उसके अंदर इतना ज्ञान है हनुमान जी के कथाओं में कि हर लाइन में ज्ञान होता है, एक आइडिया होता है, एक थॉट होता है, एक विश, यू नो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हनुमान जी के माध्यम से हमें कितनी चीजें बताई जा रही हैं। सो मेनी आइडियाज आर बीइंग प्रेजेंटेड टू अस। और ऐसे स्टोरीज जब आते रहते हैं तो एक स्टोरी है यू नो विच इज यू नो लिंक्ड टू हनुमान, विच यू नो ऑलवेज रिमाइंड्स मी दैट भगवान भी कितने हम्बल होते हैं हमारे सामने। कहते हैं कि जब हनुमान जी यू नो लंका के लिए जा रहे थे, देन ही वाज यू नो वो शोर ऑफ समुद्र के बगल में थे और सब बोल रहे थे, ऑल वानर्स वर गैदर्ड ओवर देयर, सामने समुंदर दिखाई दे रहा था, द ब्लू सी स्ट्रेचिंग अक्रॉस, कहीं बियॉन्ड होराइजन में सोने की लंका थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कितने दूर है होने वाला है ये। तो सब वानर बोल रहे थे इतना दूर तो हम छलांग नहीं मार सकते, कोई बोल रहा था हमें इतना योजन मींस इट्स अ मेजरमेंट टूल कि कितने माइल्स होते हैं यू नो, तो योजन कितने योजन तुम जा सकते हो। सो कोई बोल रहा था हमें 10 योजन जा सकते हो, कोई 50 योजन। तो हनुमान कुछ नहीं बोल रहा था, वो चुप बैठा था। तो जांबवन जो बैर जो भालू थे वो जाके हनुमान जी से पूछते हैं कि तू कितना कर सकता है, एंड हनुमान से मुझे पता नहीं मेरे में कितनी ताकत है। इमेजिन हनुमान जी बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, ही इज फुल ऑफ डाउट। एंड दैट टाइम हनुमान जी को जांबवन उनका वर्णन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं और बोलते हैं कि आप कितने महान हो, डू यू नो हाउ ग्रेट यू आर, आप शिव जी के एक अवतार हो, आप सूर्य भगवान से आपने ज्ञान प्राप्त किया है।

0: आयु आपके पिता हैं, तो यू हैव ऑल द विजडम, आप प्रिय हो राम जी के, उन्होंने आपको भाई जैसे माना है, सो इतना स्ट्रेंथ है, सो ही कीप्स प्रेजिंग हिम एंड कीप्स प्रेजिंग हिम, एंड हनुमान जब ये सुनते हैं, ही स्टार्ट्स ग्रोइंग इन साइज, ही बिकम्स बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर, ही बिकम्स सो बिग कि उनकी जो सर बोलते हैं कि इट गोज बियॉन्ड द स्काई, इतने लंबे हो जाते हैं, पहाड़ भी उनके सामने छोटे छोटे दिखने लगते हैं, एंड देन वो छलांग मार के जाते हैं लंका के तरफ, और मतलब हनुमान जी को भी टू डिस्कवर हिज पावर्स कुछ मोटिवेशन की जरूरत होती है, एंड वी ऑल हैव अ हनुमान इनसाइड अस, हम सबको मोटिवेशन चाहिए, यू नो, लोग हमेशा हमें हमारी नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं कि अरे तू ये नहीं करता है, तू वो नहीं करता, तू ये नहीं करता है, बहुत कम लोग होते हैं जो हमें हमें पॉजिटिव पॉइंट्स देते हैं, यू नो, भगवान की जब आरती जब हम करते हैं, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, चालीसा में देखिए भगवान के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं, वैसे ही जब हम आरती करते हैं तो भगवान के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं, मतलब हर आदमी को आरती पसंद है, थोड़ा एक आध बार मेरे जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको आप प्लीज वर्णन कीजिए, टेल योर फ्रेंड्स दैट दे आर गुड एट मे बी इन पोएट्री, मे बी दे आर गुड एज क्रिएटिव पीपल, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज, दे ड्रेस वेल, छोटी छोटी बातें उनके अंदर जो हनुमान है उसे जागृत करते हैं, आई थिंक दैट इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ हनुमान बिकमिंग लाइक अ सुपरमैन जंपिंग अक्रॉस द स्काइज एंड गोइंग टू सोने की लंका, तो ऐसे ही आइडियाज हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची,
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान की जाति से जुड़ा एक और सवाल जब उठा तो क्या कहा देवदत्त ने, कीप लिसनिंग।

0: आज हम हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: जब जिज्ञासा होती है तो प्रश्न आते हैं और प्रश्न से ही अच्छे उत्तर मिलेंगे। सो प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस ऑन हनुमान। पिक अप द फोन राइट नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।
3: हेलो
0: हेलो देवदत्त हियर।
3: हेलो देवदत्त सर।
0: Hi.
3: Hi, मेरा नाम भास्कर है एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स।
0: थैंक यू सो मच।
3: और मेरा एक क्वेश्चन था
0: जी
3: हनुमान को लेके।
0: जी,
3: तो हनुमान जी की जाति को लेके कंट्रोवर्सी हुई है, क्या रामायण में हनुमान की जाति की बात कहीं पे की गई है?
0: देखिए, जो शास्त्री होते हैं, जो पंडित होते हैं, इनसे दूर रहते हैं, तो ये राजनीति की बात है एंड यू नो वी शुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली। हमारे जो शास्त्र है वो आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं और जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ ऊंचा नीचा की बात नहीं होती। हनुमान जी इज वानर और वो महाबली हैं एंड ही इज, उनके जात से कोई संबंध नहीं है एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज पॉलिटिकल गेम्स दैट आर बीइंग प्लेड। आई पर्सनली कीप अवे। जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं, मैंने एक चीज सीखा है, जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ जात पात की बातें नहीं होती। जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता, जहाँ अहंकार होता है, वहाँ जात पात शुद्ध अशुद्ध की बातें होती हैं। तो हमारे शो में हम ज्यादातर आत्मज्ञान की बातें करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, मॉडर्न सोसाइटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। वी डोंट वांट टू डिस्कस दिस जाति, सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस। ये पॉलिटिक्स होने दो ना शास्त्रों में। या सो दैट्स, आई थिंक वी शुड जस्ट बी मोर मॉडर्न 21st सेंचुरी इंडियंस एंड दैट्स माय सजेशन। बेस्ट ऑफ लक।
3: थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।
0: वेलकम। तो हनुमान विद्वान है, बलवान है, और जो विद्वान है उसके पास आत्मज्ञान होता है। जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो जात पात में विश्वास नहीं करता।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो। क्यों जुड़े हैं हनुमान शिव विष्णु और देवी के साथ, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो, जहां पे हम हनुमान जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यार, हनुमान जी के बारे में कितना बताना है आपको, लेकिन क्या करें, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, शो अभी खत्म होने वाला है। और एक बात मुझे हनुमान जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हनुमान जी एक ही भगवान है, एक ही देवता है जो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जी के साथ जुड़े हुए हैं और देवी के साथ जुड़े हुए हैं। अब शिव के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी की मूर्ति कहीं मिल जाएगी, कहते हैं कि वो शिव जी के अंश हैं। अब विष्णु के मंदिर जाओ तो रामदास हैं, वो कृष्ण के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अगर देवी मंदिर में जाओ, शेरावाली के मंदिर में जाओ, तो द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े होते हैं ध्वजा पकड़ के। तो दिस इज अ गॉड हु इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है उनके सिंप्लिसिटी के वजह से। वो विद्वान है, वो बलवान है, बट इज ऑल्सो अहंकार बिल्कुल नहीं है उनमें, बहुत ही शांति से काम करते रहे। और हाँ, इस शो के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टाइप कीजिए #devdattonmirchi #devdattonmirchi devdattonmirchi और भेज दीजिए 9033 मिर्ची पर, या आप अपना फीडबैक इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं 9033647244। मैं देवदत्त पटनायक मिलता रहूंगा आपसे मंडे टू संडे हर सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। थैंक यू।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: द व्यूज एक्सप्रेस्ड इन द देवदत्त पटनायक शो आर द होस्ट्स अलोन, नॉट द चैनल्स।

0: क्या आपको रोज तैयार होने से दिक्कत है? तो फिर सुनो मेरी बात।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. वैसे हमें लगता है कि हम दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन अब अगर इस रीजन को बदल दो, कॉज हम दुनिया के लिए तैयार ना होकर जब खुद के लिए तैयार होंगे ना, तो दैट वुड मीन कि हम कॉम्प्लीमेंट्स के लिए तैयार हो रहे हैं, और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे मूड को अफेक्ट करता है। सोचो, इट्स अ ग्लूमी डे, लेकिन आपने तैयार होने में 100% दिया है। यू एंटर योर वर्क प्लेस और लोग आपको कॉम्प्लीमेंट से नवाजने लग जाते हैं। ग्लूमी डे ऑल ऑफ अ सडन टर्न्स इनटू अ ब्लूमी डे, और आप तारीफें सुन सुनकर फूल की तरह खिल उठते हो। तो हाँ, तैयार होकर घर से बाहर निकलना इज नॉट फॉर पब्लिक, ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है यार। बस रीजन बदल दो और अपने लिए तैयार होना शुरू कर दो, तो फिर आपको ये जबरदस्ती का काम नहीं लगेगा। यूँ नहीं लगेगा कि यार डेकोरम है तो फॉलो करना है। नहीं यार, तैयार हो तो खुद के लिए, अपनी तारीफों के लिए और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। ये ना वाकई में आपके दिन की काया पलट सकता है। और अगर आप वो इंसान हो जो डेकोरम को फॉलो ना भी करते हुए तैयार होकर ना भी जाते हो, तो ये ट्राई करके देखो। जब आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लग जाएंगे और आपका दिन जो है वो बेहतर होता चला जाएगा ना, तो आप ही के लिए फायदेमंद रहेगा। चलो अभी फिलहाल के लिए आपका और मेरा दोनों का फायदा देखते हैं, और मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई मैं आपसे कह देती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बिल्लू को बार बार बोलना पसंद नहीं था, इसी वजह से बिल्लू बार बार में से सिर्फ बिल्लू ही रह गया।
0: मिर्ची VCR।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, ये फिल्म ओरिजिनली वाज सपोज टू बी टाइटल्ड बिल्लू बाबर, लेकिन फिर एक प्रोटेस्ट हुआ जिसके चलते ये डिसाइड हुआ कि यार बिल्लू अब सिर्फ बिल्लू ही रहेगा। एंड ये फिल्म एक्चुअली एक रीमेक की रीमेक है, कमाल की बात है नहीं? सो ये फिल्म बनी थी मलयालम में, जिसका नाम था कढ़ा पारायुम्बुल। अब मुझे नहीं पता कि इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने सही बोला है कि नहीं बोला है, लेकिन एक्चुअली ये फिल्म फिर तमिल में बनी। कोसेलन नाम की एक मूवी बनी थी जिसमें कि रजनीकांत द थलाइवा उन्होंने काम किया था, एंड देन ये फिल्म बनी हिंदी में बिल्लू के नाम से। एंड पता है क्या, इस फिल्म को ऑथेंटिक लुक देने के लिए इसका शूट जो है, जो सेट बना था, वो शूटिंग करने के लिए किसी मुंबई के फिल्म सिटी में या हैदराबाद के किसी फिल्म सिटी में नहीं बना था। इट वॉज एक्चुअली अ सेट कंस्ट्रक्टेड इन अ विलेज जो तमिलनाडु में था, उसका नाम था पोल्लाची। सो दैट बैकड्रॉप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट था इस फिल्म का, वो एकदम रस्टिक चार्म देता हुआ निकले। एंड वेल, इट डिड जस्टिस टू द फिल्म। हाँ, मगर इस फिल्म को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगा था कि यार इस फिल्म में शाहरुख खान के होते हुए इरफान खान को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है? उसके पीछे भी एक वजह है जिसको मैं बताने वाली हूँ थोड़ी देर में। अभी के लिए यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बिल्लू मूवी के लिए आपको पता है इरफान खान को किसने ढूंढा था? नन अदर देन शाहरुख खान ने।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, इट वाज शाहरुख खान जिन्होंने की नेम से एक देखने के बाद ये डिसाइड किया एंड ही बिलीव्ड इन इरफान खान कि यार बिल्लू की सिंसियरिटी और ह्यूमिलिटी वाला जो इफेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ इरफान खान की परफॉर्मेंस से ही निकल के आ सकता है। एंड वेल, ही वॉज करेक्ट। लेकिन जब हम बात करें इरफान खान के इस फिल्म में छाने की, नॉट शाहरुख खान, शाहरुख खान ब्रॉट इरफान खान, लेकिन फिर भी शाहरुख खान ने फुटेज नहीं खाई इस फिल्म में, बिकॉज शाहरुख खान वॉज द पर्सन जिन्होंने बिल्लू को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से प्रमोट किया एंड ही डिसाइडेड कि ही शुड नॉट बी प्लेइंग इन द फ्रंट फुट, इट शुड बी इरफान खान जो कि इस फिल्म की लाइमलाइट लेकर जाने वाले इंसान है, बिकॉज ये फिल्म उनके कैरेक्टर पर बेस्ड है। एंड सो शाहरुख खान ने अपने रोल के ऊपर फोकस करने के बजाय इस फिल्म को ऐसे प्रमोट किया कि वो बिल्लू की फिल्म है, सो दैट इरफान खान को स्पॉटलाइट मिले इवन इन इंटरव्यूज एंड प्रमोशंस। और ये दोस्ती यहीं तक नहीं थी, आगे जाकर भी देयर वाज अ टाइम व्हेन इरफान खान की तबीयत खराब हुई थी एंड ही वाज सपोज्ड टू बी ट्रीटेड इन लंदन एंड इट वाज शाहरुख खान हु ऑफर्ड हिज अपार्टमेंट इन लंदन टू इरफान खान सो दैट वो वहां रहकर अपना इलाज करवा पाए। सही कहा है किसी ने, अपनी पोजीशन से इंसान बड़ा नहीं हो जाता, दिल बड़ा कर लेता है ना तो वो नजरों में अपने आप ही बड़ा हो जाता है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बिल्लू फिल्म के गाने देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि इट माइट हैव बीन वेरी इजी टू गेट दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, यू नो ऑल दीज टॉप एक्ट्रेसेस एक ही फिल्म में इतने सारे गाने करने के लिए. लेकिन बॉस, जो दिखता है वैसा होता नहीं है.
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड पर्दे के पीछे का सच तो ये है कि करीना, दीपिका, प्रियंका, इन सब बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के स्केड्यूल्स को कोऑर्डिनेट करते करते भाई पसीने छूट गए थे क्रू के. मतलब ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान ने उनको अप्रोच किया होगा या शाहरुख खान है इस फिल्म के अंदर तो ईजी रहा होगा उनका इस फिल्म के लिए गानों में काम करना. लेकिन बात कुछ और ही थी भाई. बिकॉज ऑफकोर्स जब ये बड़ी एक्ट्रेसेस हैं तो इनके पास काम भी बहुत था, और जब काम बहुत था तो इनके स्केड्यूल्स और लॉजिस्टिक्स को पूरा का पूरा मैनेज करना वाज अ ह्यूज चैलेंज फॉर द टीम. और इनके पैक्ड कैलेंडर्स, ओ माय गॉड, उसके तो क्या ही कहने. किसी की कब डेट मिलती थी और किसी की कब डेट मिलती थी, और फिर इस फिल्म की शूटिंग भी तो चलनी थी अपार्ट फ्रॉम द गानाज. तो फाइनली इस चैलेंज को फेस करते करते इन तीनों टॉप एक्ट्रेसेस के गाने इस फिल्म के लिए शूट हो ही गए, एंड इवेंचुअली वो हमें पसंद भी बहुत आए. कमिंग टू लारा दत्ता, हु इज द लीड एक्ट्रेस इन दिस फिल्म, वेल, उनके और इरफान खान के इमोशनल सीन्स की अगर बात की जाए ना, तो आपको पता है उनके काफी सारे ऐसे सीन्स हैं विच वर एक्चुअली इम्प्रोवाइज्ड, सो दैट ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फील निकल कर आए इन दोनों के बीच के सीन्स का. ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट, लारा दत्ता उस जमाने में जिस किस्म की एक्टर थी,

किसी ने नहीं सोचा था कि वो बिल्लू में एक गांव की गोरी का रोल कर लेंगी। एंड माइंड यू, काम तो उन्होंने डिसेंट कर ही लिया था। एंड आई एम श्योर लारा के लिए दिस माइट हैव बीन एन एक्टिंग क्लास मोर देन अ फिल्म। नहीं क्या? यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज मम्मा हमें टोकती तो हैं कि ये क्या सुबह सुबह फोन उठा लेते हो. एंड एक्चुअली सुबह सुबह फोन उठाना तो इतना मजेदार नहीं है, लेकिन सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले एमटीवी देखना, वो होता था असल मजेदार. तो
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड सुबह सुबह अगर आपकी शुरुआत जो है वो म्यूजिक से हो तो इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता. हालांकि उस जमाने में भी मम्मा बुरा माना करती थी कि स्कूल जाना है, ये क्या टीवी चला के नाच गाने देख रहे हो तुम लोग, ऊपर वाले का नाम लेकर दिन की शुरुआत किया करो. लेकिन नहीं जी, हमें तो एमटीवी देखना होता था. आंखें खुली हो या हो बंद, हमने देखना होता था लकी अली को. कभी कभी किस्मत अच्छी होती थी तो शकीरा भी दिख जाया करती थी. लिंकिंग पार्क, ये हमने एमटीवी देख देख कर समझाए कि कौन है लिंकिंग पार्क, अदरवाइज तो हमें पता ही नहीं होता यार. अलार्म तो भाई सिर्फ नाम का हुआ करता था, असली अलार्म तो हमारे लिए एमटीवी था, क्योंकि हमारी आंखें एमटीवी से खुलती थी. और यही नहीं, स्कूल से आने के बाद भी हाल यही था कि स्कूल से आते के साथ ही बैग एक तरफ और एमटीवी फिर से चालू. कपड़े बदलते वक्त भी ना नजरें हमारी टीवी पर ही रहती थी, जैसे कोई वीडियो मिस हो गया ना तो पूरी दोपहर ही हमारी अधूरी रह जाएगी. आज हालांकि सब कुछ ऑन डिमांड हमें मिल जाता है, एट द क्लिक ऑफ अ बटन हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कौन सा वीडियो देखना है, लेकिन उस वक्त हर वीडियो का इंतजार हुआ करता था. हर सुबह हर दोपहर एमटीवी में अलग ही जादू हुआ करता था. और एमटीवी के वो वीजेस, शहनाज ट्रेजरी वाला, मारिया गुरेटी, मलाइका अरोड़ा, साइरस, एंड दैट टू टू टाइप्स ऑफ साइरसेस. हां, सो मेनी यादें यार जो एमटीवी से जुड़ी हुई है. सीरियसली मतलब एमटीवी देखना वाज नॉट जस्ट कूल बट आल्सो मूड चेयर अप करने के लिए, समा बांधने के लिए एमटीवी काम आता था फुल. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कोयला मूवी का एक गाना था, बदन जुदा होते हैं। वेल, ये गाना शायद हमें आज याद भी है और नहीं भी है, हमने कभी सुना और उसको अनसुना भी कर दिया। लेकिन इस गाने में एक म्यूजिक का पीस है जो कि मूवी में भी काफी सारे सीन्स में फिर इस्तेमाल हुआ है, और ये जो म्यूजिक का पीस है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है। लेकिन यही म्यूजिक का पीस ओरिजिनल नहीं है बाबू मशाए।
2: मिर्ची, टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और राजेश रोशन की दी गई म्यूजिक का ये जो गाना था, विच गोज दिस वे।

is actually not an original piece of music. Vangelis करके there was this music composer जिसने बहुत ही खूबसूरत music दिया है and इनके music से राजेश रोशन अक्सर काफी inspired रहे हैं. सिर्फ वैंगेलिस का यही म्यूजिक का पीस ही नहीं, उन्होंने काफी सारे और म्यूजिक के पीसेस भी उठाए हैं अपने गानों के लिए. एंड ये वाला जो म्यूजिकल पीस है दैट इज कॉल्ड कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैराडाइज, व्हिच साउंड्स जस्ट ब्यूटीफुली अमेजिंग.

अगर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि 90s या अर्ली 2000 की कोई फिल्म या गाने कहीं से कट कॉपी पेस्ट है तो डीएम कर दीजिएगा मुझे ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: 90s का प्यार और इजहार मुंह से नहीं हुआ करता था, गानों से हुआ करता था।
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और यार 90s का वो जमाना ऐसा था जहाँ पर किसी को स्पेशल फील करवाने के लिए एक दिन की जरूरत नहीं होती थी। अगर आपको कोई पसंद है और उससे इजहार करना है अपनी फीलिंग्स का, तो सिंपल होता था, एक सीडी जो है वो बंदा अपनी बंदी के लिए राइट करके भेज दिया करता था, और उस सीडी के अंदर वो सारे गाने हुआ करते थे जो कि सिर्फ गाने नहीं, उसके दिल की जुबान हुआ करते थे। आज के जमाने में तो स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट और यूट्यूब लिंक्स भेजना आम बात है, लेकिन 90s और अर्ली 2000s के प्यार में एक अलग ही मजा था। एक ब्लैंक सीडी लेकर उस पर खत की तरह अपने दिल के गाने लिख देने वाली बात हुआ करती थी, और वो सीडी एक प्यारे से नोट के साथ लड़की तक पहुंचा दी जाती थी। ये एक ऐसी लव लैंग्वेज थी जो बिना बोले सब कह जाती थी। और सबसे बड़ी बात, जो गाने आप सीडी में डालते थे ना, उनमें आपकी फीलिंग्स छिपी होती थी। कोई अगर पहला नशा सुनाए तो समझ लीजिए कि बंदा सच में प्यार में है। तेरा चेहरा या तुम मिले दिल खिले जैसे गाने अगर किसी ने आपके लिए चूज किए, तो समझ जाइए कि वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। आज भी अगर आपके पास वो पुरानी सीडी संभाल कर रखी है ना आपने, तो समझना कि किसी का दिल उनमें बसा था। क्या आपने कभी किसी के लिए एक स्पेशल सीडी बनाई थी, या आपको कभी किसी ने एक सीडी दी जो आज भी यादों में बसी है? मुझे जरूर बताइएगा डीएम करके ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा। एंड फिलहाल के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर ब्लू वाली गम की बोतल,
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हें याद करके ना आज दिल की उंगलियां उन गलियों में खो गई हैं जहां तुम्हारी महक और स्पंज वाली टोपी वाली जो ठंडी नमी थी ना वो हमारे बचपन का हिस्सा हुआ करती थी। स्कूल के दिनों में जब प्रोजेक्ट्स और चार्ट पेपर पर हमारा टसल चलता था तब तुम्हारी चिपचिप हर कदम पर हमारा साथ निभाया करती थी। स्पेशली तब जब रात के 10 बजे ये याद आता था कि मम्मा एक प्रोजेक्ट दिया था मैम ने, कल सबमिट करना है। तुम्हारे ढक्कन में लगी हुई वो मुलायम सी जो स्पंज थी ना जिसे अक्सर हम खेल खेल कर उंगलियों से दबाते रहते थे, वो बड़ी याद आती है यार। तुम्हारी खुशबू वो तो आज भी दिमाग के किसी कोने में बसी हुई है, वही हल्की मीठी ठंडी ठंडी और जानी पहचानी सी जो बचपन की मासूमियत और बेफिक्री भरी दुनिया की याद दिलाती है। तुम बस एक गोंद की बोतल नहीं थी बल्कि हमारी क्रिएटिविटी की साथी, हमारी मेहनत की गवाह और कभी कभी किताबों के पेजेस के बीच चिपकाई गई एक यादगार दोस्त भी हुआ करती थी। तुम्हारी जगह आज नई नई ग्लू स्टिक्स और फैंसी गोंद की बोतलों ने ले तो ली है, लेकिन जो अपनापन तुम्हारे साथ था ना वो कहीं और महसूस नहीं होता यार। शायद अब तुम दुकानों में कम नजर आती हो लेकिन हमारे बचपन की यादों में तुम अक्सर नजर आती हो। तुम्हारे बिना स्कूल प्रोजेक्ट्स की वो भाग दौड़, दोस्तों के साथ तुम्हारे ढक्कन को घुमाकर खोलना और कभी कभी गलती से हाथों पर गोंद लगाकर उंगलियों से उसका छिलना अधूरा सा लगता है। और वैसे पता है क्या, तुम्हारी एक बड़ी खास बात हो चुकी है, अब तुम अपनी पर्सनालिटी की तरह हमारी यादों से भी चिपक गई हो। तुम्हें याद करती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में प्यार तूने क्या किया का टाइटल ट्रैक इज कैसेट के साइड बी का तीसरा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जिसने अपनी जिंदगी में प्यार करने के बाद ये पूछा ना होगा कि प्यार तूने क्या किया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप प्यार में पड़ जाते हो ना, तो आपको जो प्यार के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो जब नजर आने लग जाते हैं ना, तो वाकई में आप ये सवाल कर रहे होते हो कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। रातों की नींदें जो है वो गायब हो जाती है, आपका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कम हो जाता है, सिर्फ एक चीज के ऊपर पूरी तरीके से आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हो, और वो होता है वो इंसान जो आपके ख्यालों में घर कर चुका होता है। तभी तो ये सवाल आता है कि प्यार तूने क्या किया। हालांकि जब प्यार होता है ना बॉस, तो बहुत ही अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही होती है, पेट में ना हमेशा बटरफ्लाइज होती है, एंड तभी इंसान जो है ना वो ये भी सोच रहा होता है कि एक ही पल में अचानक दी है नई दुनिया, दी है नई खुशियां। जब भी मेट की गीत नहीं बोलती है कि मुझे आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं शादी करने वाली हूँ, वैसे ही प्यार में पड़ रहे इंसान के साथ भी होता है कि उसको ना किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो प्यार में होता है। और जब इंसान प्यार में होता है ना, तो दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं होता है, हमें सिर्फ एक ही चीज से खुशी मिलती है, एंड दैट इज दैट वन पर्सन। जिसका बस कॉल आ जाए तो दिन बन जाता है, जिसकी फोटो देख लो तो चेहरे पे स्माइल आ जाती है, जिसके बारे में आप दिन भर सोचते रहते हो और आपको कुछ नहीं सुनाई दे रहा होता है आसपास वाले लोग क्या बात कर रहे हैं क्या बात नहीं कर रहे हैं, विच इज गुड, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव बात कर रहा है या बुराइयां कर रहा है तो आपका कॉन्सेंट्रेशन तो उस तरफ जाएगा ही नहीं ना यार। दिन तो आपका हमेशा ऑन द हाई ही रहता है, इनफैक्ट दिन जो है वो लो पर भी बहुत ज्यादा जाता है, बिकॉज देर इज अ टाइम जब आपको ये लगता है कि यार अभी तक उसका फोन नहीं आया, अभी तक उसका मैसेज नहीं आया। 100 बारी एक ही मैसेज को पढ़ने के बाद भी हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार वो मैसेज में क्या लिखा था, एक बार पढ़ के खोल के देख लेती हूँ। एंड तभी इस गाने की ये लाइन आती है कि तू दे रहा है एहसास ये जैसे कोई मेरे पास है। वाकई में प्यार तूने क्या किया। और जाते जाते यही गाना आपके लिए चलाती भी जा रही हूँ, आपसे कहती हूँ हमें रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा मैं तो आपको मिल ही जाऊंगी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 'cause इट्स हॉट।

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची,
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट
0: मिर्ची।

0: It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना।

माइंडेड। अरे मेरी जैसे डांस किसको आता है, पूरी योग राज को मैं ही सिखा दूं।

चले तू ले ले पूरा दिन हो तैयार तू घंटे नगन मैं हूँ यही एच सर्विस टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट हाथ मेरा थाम लेट मी मेक यू स्माइल आई लाइक योर स्वैग यू लाइक माय स्टाइल

0: Mirchi, it's hot.
1: Oh God, one more email.

स्टेशन तेरे मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तुझे चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

0: जी
1: की गल करनी है?
0: तेरे मेरे बारे
1: की?
0: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
1: बचपन दी बात होर सी।
0: अरे 10 साल हो गए।
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई नागिन।

नामे समझा नामे जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा मगर फिर भी ना जाने क्यों